0: धी तक जुडू तक धीमी तक जुडू तक धीमी तक जुडू तक धीमी तक जुडू
1: लग जन जुनता तक तक जुड जुनक तक जुनता तक धन तक जुनु
2: तक धन तक तक तक धन तक जुनु धन तक धन तक कर तक तक धन तक जुनु
0: तक तधी तक जुडू तक तधी तक जुडू तक तधी तक जुडू तक तधी तक जुडू तक तधी तक तधी तक जुडू तक तधी तक तधी तक जुडू तक तधी तक तधी तक जुडू तक तधी तक तधी तक जुडू तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी तक तधी त